0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
2: 647-706-6640 कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
3: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक लेके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दिन देने
2: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
3: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172
4: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057900560 6 Marconi Code Bolton 9059519394 Stephen Furniture ki dhamake dar festival season se
5: ਓਏ ਟਰੱਕ ਕਾਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਇਟਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂ
6: ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜੇ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ GTA ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਪ PNJ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ
7: ਪਹੁੰਚੋ 5330 ਬ੍ਰੈਡਕੋ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਮੈਥਸਨ
8: ਇੱਥੇ ਪੀ ਲਾਈਨ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਵੀਲਰਸ ਅਤੇ 18 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
6: ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਐਂਡ ਗੈਰੀ ਨੂੰ
8: 9054595533

0: fruits and vegetables,
1: dairy products, snacks, fresh chicken, beef, goat meat, sab kuch milega. Inna the restaurant vich tusi prawnthe, chana bhatura, veg thali, veg biryani, butter chicken with naan da swaad lo.
0: Ek baar aaunge, fir baar baar aaunge.
1: Unbeatable prices, sale all time. Dana Mandi, 1729 Queen Street, East Brampton, major intersection, Queen and Bramley.
0: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
2: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
3: सावन चढ़िया
2: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
3: दुनिया मेले जानती
2: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: तुम्हारे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: 7 साल ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8401
1: ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾ ਆਫਿਸ
2: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउन लई फैमिली लॉ जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211
3: दो व्याह किते इंडिया च एको ही बाजार विच सब कुछ हो गया ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ
4: ਸਾਫਾ ਟਰਬਨ ਟਰਬਨ ਵੈਡਿੰਗ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟਸ ਕੁਰਤਾ ਕੋਟ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਕਲਗੀ ਕਸਟਮ ਕਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫਾ ਟਰਬਨ 158 ਕੈਨਰੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 437-655-3040 4367-655-3040
5: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
6: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज
9: मम्मी मम्मी भूख लगी

सो गाइस, खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कन से चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूजर्सी तक सन सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार, चढ़दी कला वाला, निरभउ, निरवैर रहेगा। मोहब्बत और प्यार इस दिन दे विच भरी रहेगी, रोशनी रस्ते दिखाएगी, तुसी चलते रहोगे। तो हमेशा ही तरह इस शो में तुसी 9 तो लैके 10 बजे तक जुड़ते हो। स्टूडियो सिकड़ियाँ देते 9:17 और तुसी सानू कॉल कर रहे हो 905-673-3337 नंबर ते ऑन एयर गलबात करने लिए या ऑफ एयर लिए 416-518-3200। पीरसन का ट्रैक 6 जिथे जहाज उड़ान पर लिए तैयार खड़े ने उत्थे डेरी रोड और 401 वैसटर्न ईस्ट फुली बिजी नज़र आ रहे हैं। कुछ खबर जिन्हों विचों असी तुहाडे नाल जिक्र करते रहेंगे। तो नाल नाल जो साढ़े नाल गलबात 905-673-3337 नंबर यूज कर सकते हो। सो पीयर पॉलियर नूं होर झटका, एक होर ब्रांड तो मैंबर पार्लीमेंट की पोजिशन तो अस्तीफा के बहुत हो गया जी, मैं हुण कर लिया तो मैं हुण चलदा, बाय बाय। उधर बाय इलैक्शनज दे विच 3 बाय इलैक्शन अनाउंस किए गए, तिना चो एक लिबरल लिए जितना जरूरी टू गैट द मेजोरिटी गवर्नमेंट, फॉर्म द मेजोरिटी गवर्नमेंट। दूसरे पास लिबरल पार्टी ऑफ ओंटेरियो ने दोष लगाए ने डग फोड़ दते इंडियन स्टाइल दे विच, मोदी घर घर

0: साल से लेकर 64 साल के दरमियान है। सो जिन्हें भी अपने लिसनर्स ने, मैं ही कहूंगा काफी लोग जो हो सकता साडा प्रोग्राम नहीं इस समय सुन रहे, साडा मैसेज उन्होंने परिवारों तक जरूर जरा कन्वे करो ताकि ज्यादा तो ज्यादा जो लोग है जो ग्रांट डिजर्व करते हैं उन्होंने तक मिल सके। पंजाब इंश्योरेंस वालों किसी भी क्लाइंट तो RDSP अकाउंट ओपन करने की कोई भी जी फीस चार्ज नहीं की जा रही। तुम कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से, मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-910-9000 416-910-9000। वैबसाइट है punjabinsurance.ca। तो लास्ट विच मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा, कुछ कॉमन इम्पेयर्ड कंडीशन दसना चाहूंगा जिसे अंडर एक ग्रांट ले जा सकती है। सब तो पहला जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट है, अगर आप डेली इंसुलिन ले रहे हैं, उम्र 49 साल तो घट है, तो यह ग्रांट अपलाई कर सकते हैं। इस तो अलावा स्पेशल नीड वाले सारे जिहड़े बच्चे हैगे ने, अडल्ट हैगे ने, वो कवर किए जा रहे हैं। ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD, डायमेंशिया, अल्जाइमर, सीपी का इशू है, डिवेलपमेंटल डिले, एपिलेप्सी, डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटी, क्रॉनिक कोई कंडीशन है, MS, स्वेयर कोलाइटिस, स्वेयर अर्थराइटिस, कॉर्न डिजीज, ल्यूपिस, किडनी फेलियर रिक्वायरिंग डायलिसिस, कैंसर का कोई पेशेंट है, उम्र 49 साल तो घट है, उन्होंने भी यह ग्रांट मिल सकती है। इस तो अलावा स्वेयर डिप्रैशन भी कवर किया गया, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक सर्वाइवर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, PTSD, एंग्जायटी डिसऑर्डर, स्वेयर लर्निंग डिसबिलिटीज, हियरिंग लॉस, डेफनेस, विजन इंपेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, क्रॉनिक पेन, OCD, पोलियो, पार्किंसन, पैरालाइसिस, हिप इंजरी, पेन, ग्लूकोमा, एक लंबी लिस्ट है। जो तुम कॉल करोगे आप गाइड कर देंगे वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस ग्रांट और नॉट। इवन पेंजी जो किस तरह कोई एक्सीडेंट भी हो गया एंड अनएबल टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटी, उम्र 49 साल तो घट है, तो उन्होंने भी 90,000 डॉलर की ग्रांट मिल सकती है। एंड जेडे बेनीफिट पेंजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों ऑलरेडी लगे हुए ने मंथली बेस से, वो भी बंद नहीं होने, ये एडिशनल ग्रांट है जो तुम्हें मिल सकती है। कॉल करना है पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000।
1: थैंक यू थोड़ा, बिल्कुल जी तुसी जरूर कॉल करो ते RDSP दी लॉजी जान करो।

0: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है, कौन यह लोन है जिहड़ा लै सकदा?
1: बिल्कुल जी। तो आप पीआर है, सिटीजन है या प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, चाहे आप न्यू कमर है, आप कल लैंड करें एज अ पीआर कनाडा में, स्पाउस है आप राइट, और स्पाउसल पीआर पे जैसे भी, आप एलिजिबल है इसके लिए। और इसमें लाइक ऐसा अब नहीं है कि लाइक आपकी फैमिली इनकम लो होनी चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है।
0: अच्छा,
1: आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कहीं भी, आपकी इनकम चाहे 1.5 लाख है लास्ट ईयर के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे 2025 के एनुए पे, आप तब भी एलिजिबल है। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्सेस करते हैं, और लाइक फुली ऑनलाइन है, कहीं नहीं जा रहे आप, 2 से 3 घंटे आप फोन पर लगाते हैं एवरी डे, असाइनमेंट का एग्जामिनेशन नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। चाहे आपने 10th 12th करी हो ना करी हो, कहीं से भी करी हो, दैट डजंट मैटर। फंडिंग हासिल करें 50 से 170,000 डॉलर तक, इसका लाइक वो 0% पे होती है फंडिंग, 0% है उसका ब्याज, और जब ब्याज स्टार्ट होता है 2.5 साल बाद तब भी 2.5% है वो भी साल का, दैट्स इट।
0: अच्छा, जैसे फैमिली ऑफ 4 है तो उनकी कितनी बन जाएगी फंडिंग? हेलो,
1: हाँ जी,
0: अगर जैसे फैमिली ऑफ 4 है, 4 पर्सन है एक फैमिली में, उनकी कितनी बन जाएगी फंडिंग?
1: हाँ जी, उस केस में उनकी बनेगी $160,000, और 2 साल का कोर्स करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, उनकी $160,000 बन जाती फंडिंग। अब मजे की बात यह है इसमें कि अगर उनके बच्चे 11 साल से छोटे हैं उम्र में, तो उनकी कॉलेज की जो फीस है वो गवर्नमेंट ही कवर कर देगी।
0: अच्छा।
1: और बड़ी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, आपको बैंक नहीं दे रहा फंडिंग, इसलिए क्रेडिट चेक नहीं है कुछ भी, इसलिए इसमें लाइक कोई झोल नहीं है, सारा साफ काम साफ तरीके से कर रही, कोई कागज वेरियत नहीं होते इसके अंदर आपकी। तो मतलब आपके बच्चे का छोटे तो आपको ज्यादा फायदा है, बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा फायदा है, फंडिंग और बढ़ जाती है। और 160,000 का लोन बिना क्रेडिट चेक के, बिना गारंटर के, वो कहाँ कैसे मिलेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने खुद अभी मैं बैंक गया था लेने 70,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट, उन्होंने मेरे से पर्सनल गारंटी साइन करा ली मेरी कंपनी के लिए भी, कि भाई अगर आपका घर उठा लेंगे अगर आपने लोन वापस नहीं कराई, लाइन ऑफ क्रेडिट जो भी होता है राइट। तो मतलब जब इस मार्केट में आपको लोन मिल रहा है 0% पे, बिना क्रेडिट चेक के, बिना गारंटी के, ये नहीं आप ये उठा लेंगे वो उठा लेंगे,
0: इसलिए
1: पीछे ना रहे। हाँ जी बिल्कुल जी, और वो ये भी पर्सनल गारंटी नहीं है, ये नहीं कि मेरी गाड़ी उठा जाएंगे, इसमें कोई चलाकी नहीं है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 437-234-3175।
0: बिल्कुल जी, बहुत सारे कोर्सेज है, पर कोर्सेज की जानकारी भी लेने हैं भी केड़े केड़े है, पर तुसी नंबर पहला नोट कर लो, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक नू तुसी कॉल करनी है, एजुकेशन दे विच तुसी अपने आप नू एनरोल करो, कोर्सेज बड़े वधिया वधिया हैगे है, ते फिर थानू जिहड़ी फंडिंग है वह गवर्नमेंट वालों मिलती है, ते बहुत वधिया मिलती है, मतलब थोड़ी नहीं है, काफ़ी मिल जाती है। ते सारांश कोर्सेज केड़े केड़े हैगे इहदे च?
1: हाँ जी, कोर्सेज जो एक तो 2 ईयर का कोर्स है उसमें फंडिंग डबल आती है, वो है बिजनेस मैनेजमेंट का, बाकी है हॉस्पिटैलिटी का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, 1 ईयर के हैं वो प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स फुली ऑनलाइन है, कहीं नहीं जा रहे आप, कोई एज लिमिट नहीं है, घर के कंफर्ट से फोन पे लैपटॉप पे क्लासेस लगाएं, और लाइक फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती, और इसलिए कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स भी आपका एनओए, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, ना कि आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट, जो कि सेटिंग हो पाए, कारीगरी हो पाए, साफ काम साफ तरीके से।
0: जॉब कहीं करना है उसको कितनी इनकम हो रही है, कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, है ना?
1: नहीं जी, पहले पॉलिसी फोकस थी लो इनकम फैमिलीज पे, अब जो चेंजेस आए हैं उसमें लोन डबल हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, फैमिली इनकम मैटर नहीं करती, अगर कोई बंदा 1.5 लाख कमा रहा है या 5,000 कमा रहा है, उनको सेम ही फंडिंग आया करेगी लोन के रूप में।
0: अच्छा, अब जो फंडिंग है वो डबल होगी है?
1: लोन डबल हो गया जी।
0: अच्छा।
1: तो पहले हम 30,000 से 1 लाख की बात करते थे, अब हम बात करते हैं 50,000 से 1,70,000 की।
0: ओके, 50,000 से 170 तक पहुंच गया है, वाओ।
1: बिल्कुल जी, ये मान के चले हैं।
0: हाँ
1: जी,
0: क्या
1: अब जैसे अगर आप कुछ भी रिफाइनेंस कराते हैं, तो 1 मिलियन का घर जो है रिफाइनेंस कराते हैं, पहले तो उसमें इक्विटी नहीं है, लेकिन चलो मान लो इक्विटी है अभी आपकी, आप वो उस घर को कराते ऐसे निकाल, आप निकालेगा, आप निकालेंगे 1 लाख, आपका खर्चा आ जाएगा 15,000 से 20,000, और यहाँ पे आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, 0% पे हासिल कर रहे हैं, और 2.5% ब्याज साल का, 2.5 साल बाद जो किस्त स्टार्ट होती है, किस्त आज स्टार्ट नहीं हो रही लोन की,
0: कोर्स खत्म होने के 6 महीने के बाद। जो मनी है उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही है पर्टिकुलरली?
1: कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं, ये पॉलिसी तो हमेशा से ही रही है। 2018 से जब मैंने काम शुरू करा था, मैंने भी पहले एनरोल करा था अपने आप को, तो कहीं भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे क्यों रही है? खर्चे चलाने के लिए, ग्रोसरी, गैस का बिल, लिविंग एक्सपेंसेस, बच्चों को खाना चलाने के लिए,
0: ठीक है,
1: कहीं भी यूज करें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना पहले थी ना आ जाए।
0: ओके, अच्छा फिर थोड़ी फीस कितनी का?
1: हमारी फीस है जी काम होने के बाद, शुरू में नहीं, काम होने के बाद $199 वन टाइम फीस है। अगर 2 साल का प्रोग्राम है, 2 बार फाइल बनती है, तो $199 × 2 $400 फीस है। एयरपी फीस बताते हैं, मीठी बातें नहीं करते, चलाकी नहीं करते, और स्टाफ काम साफ तरीके से, जहां पे कोई कारीगरी नहीं है, सेटिंग नहीं है, कमीशन इसमें बिल्कुल नहीं है। आपका फायदा हाथी जितना है, हमारा फायदा चीटी जितना है। नंबर नोट करें आप हमारा, 437-264-31-75, 437-264-31-75। हुणे कॉल करो, एस्टिमेट लो फ्री में, 437-264-31-75, 437-264-3175। ऑफिस साडा हैगा जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरंटरी डेयरी पे। आप आज भी आ सकते हैं, 16 तारीख से बैच स्टार्ट है। एनरोल कराओ, लोन हासिल करो 0% पे, 50,000 से 1,70,000 तक का। अगर आपकी जॉब ही लगती है ना कोर्स खत्म होने के बाद, आप गवर्नमेंट से कहकर लोन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं 15 साल तक, और फिर आप लोन लाइक डेफर भी कर सकते हैं 1 से 3 साल तक। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 437-264-31-75, 437-264-3175।
0: जी सरांश, थैंक यू वेरी मच। ते बिल्कुल जी, सरांश नूं तुसी कॉल करो, बहुत वधिया जिहड़ी गवर्नमेंट है थोड़ी सपोर्ट कर रही है, ते थानू जिहड़ा लोन मिल रहा है, ते जदों वापस करना वह भी इंट्रस्ट रेट बहुत घट है, ते वधिया वधिया कोर्सिस करो, अपने आप नूं अपग्रेड करो। नंबर एक बार फिर नोट कर लो, 437-264-3175, 437-264-3175 ते तुसी सरांश नाल गलबात कर सकते हो। ते लो जी, आपां हुण मनजीत नाल भी गलबात कर लीए। मनजीत जिहड़े कि बड़े वधिया अपलायंसिस दी जानकारी लैके पहुंचदे आ, ते 2 लोकेशनां तों सर्व करदे आ। वधिया वधिया तुसी अपलायंसिस लैणे आ, चाहे नवें घर दे ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
1: ਬਸ ਵਧੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਦੇ 5 ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਇੰਚ ਵਾਈਡ ਦਾ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟੋਪ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੋਪ ਦੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਦ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, $6,500 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $4,299 ਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਰੀਡੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਚਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਇੰਚ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਡੈਪਥ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਰਿੱਜ, 36 ਇੰਚ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕੁੱਕਟੋਪ, 30 ਇੰਚ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਵਾਲਵ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, $13,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਬੰਡਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $69.99 ਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $2,200 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $14.99 ਚ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ 75 ਇੰਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ 75 ਇੰਚ ਦਾ ਮਿੰਨੀ LED 4K ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ 2026 ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ $1,400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ $899 ਚ 75 ਇੰਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮਿੰਨੀ LED 4K ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ ਹੈ 905-450-5054-450-0054, ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਜੀ।
0: ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।

0: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
2: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कितों मिलेगा?
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
0: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-310-0
0: यामिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
4: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए JTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
5: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन। ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900।

0: Community.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: पर उसे मन सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: ते 98
3: एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने
4: हो काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
4: 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: ஏசியா செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரமனோ ஜோனியோ தத்து சிவியா பிளிங்கட்டி மூலம் 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
2: इसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते
4: 416-453-8131 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 4-6 ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 3-6 ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਢੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਮਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 416-457-3381 416-745-2551

0: चक्कर लगाओ।
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।